0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया FM
1: 92.6।
2: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
2: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: इलै

0: देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं। सुन रखो कि वो हर चीज पर इहाता किए हुए है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं, और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर है।
1: वमा

फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ आहकाम का पहुंचा देना है, और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजाक चखाते हैं तो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के आमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुकरा है।

तमाम बादशाहत खुदा ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है।

0: ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने उसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते। और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
1: वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अन इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन।
0: और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की, बेशक इंसान सरीह नाशुकरा है।
1: अम इत्तखज़ मिम्मा यखलुकु बनातिन व अस्फाकुम बिल बनीन।
0: क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दिए।
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ।
0: हालांकि जब उनमें से किसी को उस चीज की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने खुदा के लिए बयान की है तो उसका मुंह स्याह हो जाता और वो गम से भर जाता है।
1: يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ।
0: क्या वो जो जेवर में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके खुदा की बेटी हो सकती है।
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ।
0: और उन्होंने फरिश्तों को कि वो भी खुदा के बंदे हैं खुदा की बेटियां मुकर्रर किया, क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे, अन करीब उनकी शहादत लिख ली जाएगी और उनसे बाज़ पुर्स की जाएगी।

0: उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिलाता है और वही मारता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का परवरदिगार है।
1: बल हुम फी शक्की यलअबून,
0: लेकिन ये लोग शक में खेल रहे हैं।
1: फौतकिब यौम तअतिस समाउ बिदुखान मुबीन,
0: तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से सरीह धुआं निकलेगा।
1: यौशन الناس هذا عذاب أليم,
0: जो लोगों पर छा जाएगा ये दर्द देने वाला अजाब है।
1: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون,
0: ऐ परवरदिगार हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं।
1: أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين,
0: उस वक्त उनको नसीहत कहाँ मुफीद होगी जबकि उनके पास पैगंबर आ चुके जो खोल खोल कर बयान कर देते थे।
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون,
0: फिर उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे ये तो पढ़ाया हुआ और दीवाना है।
1: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون,
0: हम तो थोड़े दिनों अजाब डाल देते हैं मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो।
1: यौम नबतशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून,
0: जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे।
1: वलकद फतन्ना कबलहुम कौम फिरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम,
0: और उनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कद्र पैगंबर आए।
1: अन अद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन,
0: जिन्होंने ये कहा कि खुदा के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ।
1: वअल्ला तअलू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन,
0: और खुदा के सामने सरकशी न करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ।
1: वइन्नी उज़्तु बिरब्बी वरब्बिकुम अन तर्जुमून,
0: और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ।
1: वइन लम तुमिनू ली फअतज़िलून,
0: और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ।
1: फदा

0: और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और वो जो खुदा ने आसमान से जरिया रिज्क नाजिल फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा किया, उसमें और हवाओं के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं।
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے
1: ویل لکل افاک اثیم
0: ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے
1: یسمع

और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत खुदा की निशानियां हैं।

0: और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताबे आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा।
1: हाजा किताबुना यन्तिकु अलैकुम बिल हक,

और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे।

और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
3: www.ucp.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: मेरे प्यारे सामईन, आप जानते हैं कि आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया और हम एफओएसटी का प्रोग्राम कर रहे हैं हफ्तावार, जिसको वीकली बोलते हैं, यानी फैकल्टी प्रोग्राम, जिसमें आज नौबत है। फारसी में नौबत बोलते हैं, उर्दू में बारी बोलते हैं। आज बारी है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की और मैंने आपको तारुफ करवाया, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं मैम रोशा की तरफ है तो बहुत छोटी, लेकिन इज्जत के लिए, ताजीम के लिए, तकरीम के लिए मैं इनको मैम बोल रहा हूँ। कि आप मुझे ये बताइएगा कि आप इसके अलावा भी कुछ काम करती हैं, मैं जानता हूँ। उनमें से एक काम ये है, जो भी हमारे एफएसटी में कोई भी ऐसा जो काबिल जिक्र वाकया रूनुमा होता है, आप उसको फेसबुक पे लगाती हैं। बताइए वो तजुर्बा कैसे है, उस पर आप कैसे काम करती हैं। ओवर टू यू।
1: थैंक यू सर। सही, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, आई लाइक टू स्टे अपडेटेड, और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ मुझे होता है कि आई शुड बी अपडेटेड, क्योंकि हमने यंगस्टर्स को पढ़ाना होता है। तो इफ़ वी स्टे इन टच विद सोशल मीडिया, जो कि आजकल यंगस्टर्स की लैंग्वेज है, तो वी कैन कम्युनिकेट बेटर। तो क्लासरूम्स में भी इसका बहुत इफेक्ट होता है कि हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट जो भी पूरी वर्ल्ड में जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, हम उनसे अवेयर रहेंगे, तो ही हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे। तो इस वजह से जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डॉक्टर हाफिज़ा रिजवाना कौसर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैंडल दीज प्लेटफॉर्म्स। सिंस देन आई हैव बीन अपलोडिंग ऑल द लेटेस्ट इवेंट्स दैट्स बीन हैपनिंग एट एफओएसटी। तो उसमें हमारे पास जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, I have to post daily, but इसमें मुझे ये satisfaction मिलती है कि they are aware कि हमारा FOST department किस level तक कौन से काम कर रहा है। तो students भी obviously उन सब pages को follow करते हैं, तो उनको applications का पता चलता है, उनको ये होता है कि FOST किसी से पीछे नहीं, क्योंकि अगर हम पूरी world में universities देखें, they are present socially, एंड वो बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत मार्केटिंग करते हैं, और मोस्टली अब तो 60-70% सोशल मीडिया पर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अब तो ये मैंडेटरी हो गया आई गेस। तो इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको थोड़ा और इन्हांस लेवल पे लेके जाया जाए, स्पॉन्सर्ड हो जाए ये एडवर्टीजमेंट्स हमारी सोशल मीडिया पेजेस भी। दैट इज़ इन वर्क्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट विल बी लॉन्च सून।
0: बहुत शुक्रिया मिस रोशा, आपने बड़े तफसील से बताया और आपकी आवाज़ में जो तवानाई और एनर्जी मुझे नज़र आई, वो इस चीज़ की गमाजी करती है कि आप इस काम को दिलचस्पी से करती हैं, बेजारी से नहीं करती, जो कि हम अक्सर कहते हैं मेरे पास इतना टीचिंग लोड है, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ये मुझे बात आप पे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, सलामत रहिए। अब मैं बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के बढ़ना चाहूँगा, हमारी एक और यंग कॉलीग यहाँ बैठी हैं, मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि इनको भी मेरे होते हुए सिलेक्ट किया गया, और इनका नाम है मिस सबा नईम, और इनके वालिद भी पढ़ाते रहे हमारे पास आके, इनके साथ इस तरह भी ताल्लुक़ है मेरा, और बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मिस सबा नईम वही सवाल आपसे करूँगा जो मिस रोशा ताहिर से किया था, कि आप जब पहली दफ़ा गई क्लासरूम में, पहले तो अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा तालीमी सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ, और कब आप यूसीपी में आई?
2: थैंक यू सर। मेरा भी तारुफ थोड़ा रोशा की स्टोरी से काफ़ी मैच करता है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट एमफिल भी वहीं से किया था, बट आई थिंक आई एम 2 ईयर्स सीनियर रोशा। तो आई जॉइंड यूसीपी इन 2016, और वही मुझे याद है कि आई जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड एमफिल किया था, एंड यूसीपी वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहां मैंने अप्लाई किया। एंड देन यहां का सिस्टम की बहुत फेयर है कि उन्होंने मुझे मॉक लेक्चर में साथ ही बुलाया, एंड देन ऑन मेरिट मेरा जो है सिलेक्शन भी हो गई थी। सो लेकिन मैथ्स जो है सब्जेक्ट, आई हैव लव्ड मैथमेटिक्स सिंस माई चाइल्डहुड, और साथ उसके टीचिंग जो है वो भी मेरा पेशा, सो दीज टू बोथ थिंग्स कम्बाइन, सो आई एक्चुअली यू नो लव माई जॉब, आई ऑलवेज बीन आई लव बीन लाइक टीचिंग मैथमेटिक्स।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने अपना तारुफ करवाया। मुझे ये बताइएगा, जब आपने क्लास रूम में जाके अनाउंस किया कि आपका ये पहला तजुर्बा है, कि आपने नहीं अनाउंस किया?
2: नहीं सर, वही रोशा वाली स्टोरी के आई वॉज अगेन क्वाइट यंग, तो मुझे तो याद है कि स्टूडेंट्स मैं क्लास में गई तो दे एक्चुअली थॉट आई वाज अ स्टूडेंट. लेकिन वही वाली बात है कि हम उस तरीके से प्रिपेयर करके जाते हैं सारा लेसन प्लान. सो इट वाज अगेन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. और उनके साथ ही हमने लर्न भी किया है. देन जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं यू देन यू एक्चुअली गेट टू लर्न मोर. आपको अपने सब्जेक्ट की डेप्थ के बारे में ज़्यादा पता चलता है. एंड नाउ इट्स बिन 8 years तो एंड स्टिल आई गेट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे अगेन.
0: बहुत शुक्रिया मिस सबा नहीं डॉक्टर शाही सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप मेरे हमसाये भी हैं और मेरे करीब साथ वाले कमरे में बैठते हैं. आपका केबिन 4 है, मेरा केबिन 5 है. इसी तरह हम FYT में भी इकट्ठे ही बैठते थे. लगता है हमने इकट्ठे यहाँ से जाना भी है. UCP से मेरी मुराद है, दुनिया से नहीं. अल्लाह आपकी ज़िंदगी मज़ीद तवील करे, आपको हयाती बख्शे. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको UCP में पढ़ाते हुए इतना तवील अरसा गुजर गया, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में? बुनियादी फ़र्क आपको क्या नज़र आता है?
3: जी शुक्रिया बहुत बहुत. एक्चुअली वाकई मैंने जो मेन चीज़ यहाँ आके देखी कि UCP वाज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड मुझसे पहले ही, तो मैंने अपना एक हिस्सा ज़रूर डाला है उसमें. और वी आर कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग कि हम और आगे की तरफ चलें और बेहतरी लाएं. और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लीडरशिप का यही काम है कि असाइन द राइट टास्क टू राइट पर्सन. तो मैंने अपनी टीम को जो जो काम दिया, जिसमें ये दोनों बैठी हैं सबा नईम भी और रोशा, इन्होंने मेरी तवक्कोआत से भर के जिम्मेदारी निभाई. और चूंकि हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, FIT में बहुत ज़्यादा सेक्शन होते हैं, तो मुझे वहाँ भी कोऑर्डिनेटर भी इन्हीं को बनाना पड़ा. एक कोर्स में रोशा हैं और दूसरे कोर्स में सबा नईम. और इन्हें बड़ी मेहनत से काम किया और अभी भी ये लेके चल रहे हैं. और जो जो भी मेरे जहन में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी आइडिया आता है, ये इनको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. अपनी पूरी टीम के साथ कंटिन्यूस मीटिंग्स भी करते हैं. और हमारा यहाँ ये भी हम कर रहे हैं काम कि हर 4 हफ्ते के बाद मैंने अपनी टीम से कह रखा है कि, बल्कि तमाम से कोऑर्डिनेटर तो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखते रहें, ताकि एंड पे आके अगर कोई ये कहे कि क्लास में 5 बच्चे फेल हो गए तो हमें उसका वो हमने सुनना चाहते हैं. हमें पता हो कि बच्चा क्यों फेल हो रहा है, टीचर की एफर्ट कहाँ चली गई है. तो टीचर जो, और उनको उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, जो ऊपर नहीं आ रहे. दे आर अराउंड 50% मीन के वो तो मार्जिन पे हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है. तो ये एफर्ट हमारी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे. समर में हम एक अपने वर्कशॉप भी करते हैं जिसमें रिव्यू करते हैं अपने तमाम उसका. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमने FMS में मरियम हैं हमारी टीचर, उनको उनका क्लस्टर हेड बनाया हुआ है. और क्लस्टर हेड भी हैं हमारे अलहदा अलहदा, डॉक्टर सुमेरा को भी क्लस्टर हेड हैं और कोऑर्डिनेटर उसके अलावा हर कोर्स के कोऑर्डिनेटर अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं. एक एक सिंगल फाइनल एग्ज़ाम और सिंगल यानी उनका मिड टर्म भी हो रहा है और बच्चों की काउंसलिंग भी हो रही है. और उनको उनके क्लासेस में हम विज़िट भी कर लेते हैं, जाके पूछ भी लेते हैं कि क्या मसला है. और मेरे पास एक बच्चा आया जब मैंने उसको बुलाया कि भी आप क्या मसला है, आप क्यों नहीं काम कर रहे, तो पता चला वो तो अपने वालदा से नाराज़ है. तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर शुड बी वेरी क्लोज टू हिज और हर स्टूडेंट्स. उसको पता होना चाहिए कि बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा.
0: जी बहुत शुक्रिया.
2: इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड देन टीचिंग इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक जो चीज़ एज अ टीचर मैंने बहुत चीज़ अपने नोट किया कि वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली लर्निंग. हमारी यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होती है, जैसे सर ने जिक्र किया कि इन आवर समर सेमेस्टर वी एक्चुअली डू वर्कशॉप्स ऑन मैथमेटिकल पेडागॉजी. कि ये जो मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली थोड़ा सा, या इट्स काइंड ऑफ क्या, या आइदर यू आर अ मैथ पर्सन एंड देन यू आर नॉट अ मैथ पर्सन. इस मिथ को हम डीबंक करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि मैथ्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स. तो ये बहुत अहम सब्जेक्ट है. और उसके अलावा दूसरा, क्योंकि हम जैसे जिक्र किया, यू हैव सीन कि हमारे में यंग टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं. सो हम लोग मोस्टली दे आर सम जनरेशन मिलेनियल्स काफ़ी टीचर्स हैं. एंड देन जो हमारी स्टूडेंट ऑडियंस है दैट इज़ जनरेशन सी. सो मिलेनियल्स की ये थोड़ी सी खासियत होती है कि हम अपने आप को बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं. सो वी आर एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जनरेशन जो हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने किस तरीके से उनको कन्विंस करना है, उनकी लैंग्वेज में हम बात करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ समथिंग जो हमारी एक्टिवली लर्निंग होती है, ये हमें डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी.
0: बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी साहब. दोबारा आपकी तरफ बढ़ूंगा. मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी बॉटनी हो गई, ये थोड़े से ज़रा बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं इनको सिमुलेट करना, इनको हजम करना. तो आप मुझे ये बताइए आप किस तरीके से पूरे 4 साल के लिए अपने बच्चों को वहीं रखते हैं और किस तरीके से वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उससे पहले अपना रास्ता तब्दील नहीं कर लेते, कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर लेते. मेरा ये आपसे सवाल होगा.
3: जी, इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि हमें पहले सेमेस्टर से ही बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप किसी एक टारगेट लेकर आए हैं और डिग्री के लिए आ रहे हैं और इसमें अपना जो स्टेमिना है उसको बरकरार रखना है. और यूसीपी की पॉलिसी भी है कि सीनियर टीचर शुरू के सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ाएं, और स्पेशली एचओडी के लिए तो है कि वो एक कोर्स अंडरग्रेड को ज़रूर लें, तो उससे भी इंटरेक्शन काफ़ी बेहतर रहता है. और उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आपका टारगेट क्या है. मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 7th-8th सेमेस्टर में आके ये फेडअप हो जाते हैं मैथमेटिक्स के, और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और मैं ये कहा करता हूँ कि टीचर का रोल तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरह होता है, क्योंकि बच्चा जो है जब उसको पता चलता है कि मैंने डॉक्टर पे जाना है तो और मुझे रोना है, तो वो तो डॉक्टर को देखते ही उसने रोना शुरू कर देना है. तो बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो है जो उसको बहलाएगा, उसको टॉय दिखाएगा इधर उधर के, और उसको इंजेक्शन भी लगा देगा, और उसको बाद में याद आएगा कि मैंने रोना भी है. तो टीचर का रोल ये है कि जो बच्चे पढ़ने भी नहीं आए घर से, अटेंडेंस लगवाने आए हैं, उन्हें बाद में पता चले कि हमें तो पढ़ा के भेज दिया गया, तो ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है.
0: मेथोडोलॉजी आपने बयान की
3: तो
0: बहुत अच्छा. और मेरा ख्याल है एक वक्त हुआ चाहता है हम एक और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा.

0: मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन आपने तो यू प्रूव योर सेल्फ वेरी सक्सेसफुल टीचर। तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे बताया था लाइब्रेरी में आके कि ये टिप्स हैं और इस तरह जाएं तो आप कामयाब हो जाएंगी। तो मैं तो बिल्कुल भूल गया। तो गजाला ने नो डाउट ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव किया और आज वो बड़ी सक्सेसफुल डायरेक्टर भी हैं।
1: अच्छा सर, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, बीइंग अ फीमेल मैथमेटिशियन और फीमेल पर्सन इन साइंस, मुझे याद है हम जैसे बीएस का ज़माना था और मैं पहली दफ़ा चेयरमैन के ऑफिस में गई थी, एंड अगेन चेयरमैन वाज डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, और मैं उनके बस ना हम लोग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गए, तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड एंड लुकिंग एट द रूम के चेयरमैन का अच्छा कमरा कैसे होता है। एंड बिहाइंड सर देयर वाज अ बोर्ड जिसमें सारे ना चेयरमैन पिछले लास्ट आई थिंक देयर वर लाइक 80 नेम्स सारे चेयरमैन का वहाँ पे जिक्र था। यस यस, और मैं उसमें थी कि अच्छा वी आर हम, क्योंकि जिस ज़माने में गई थी हम वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी हमारी ज़्यादा हो गई थी, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि कोई भी फीमेल का नाम नहीं है। एंड देन दिस ईयर 2025 डॉक्टर गजाला इज़ द फर्स्ट फीमेल चेयरमैन, फीमेल डायरेक्टर, सो दैट्स क्वाइट अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल बीइंग अ वुमन।
0: ये मैं एक छोटा सा इजाफा भी कर दूं कि डॉक्टर गजाला पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली रेगुलर पीएचडी भी है।
1: अच्छा,
0: ये एजाज भी अल्लाह ने मुझे दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की पहली रेगुलर पीएचडी भी डॉक्टर गजाला ही है।
2: बहुत शुक्रिया सर, आप इसी तरह शमा से शमा जलाते रहें और इल्म के खजाने को इस तरह निछावर करते रहें। अभी हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, वो सवाल ये होगा आपसे कि आप क्या समझते हैं कि बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में यूसीपी का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स का जो पहली प्रायोरिटी हो वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट यूसीपी हो और कोई और यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ना हो? मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूंगा कि यूसीपी में 13 स्कॉलरशिप डिफरेंट लेवल पे दिए जा रहे हैं, जिसमें मेरिट है, नीडी है, टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, किनशिप है, पंजाब कॉलेज की तरफ से कोई आया तो वो है टैलेंट बेस्ड, तो 100% ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। बहुत सारे स्कॉलरशिप अपनी जगह हैं। और दूसरा, हमने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक तो डिग्री का नाम बदल दिया है, वो इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा, बीएस मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस। और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि आखिरी सेमेस्टर में जाके स्टूडेंट्स की कुछ थोड़ी सी टीचिंग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ताकि जब ये यहाँ से जाएं तो यूसीपी का नाम रोशन करें, ना कि यूसीपी को बदनाम करें। तो वो उसके लिए हमने बाकायदा, हमारे टीचर्स ने ट्रेनिंग शुरू की थी और उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी हाल ही में हमें एक और शॉर्ट कोर्स नज़र आ रहा है, विच इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन भी हम समर में अपने बच्चों को, जो बीएस डेटा साइंस वाले तो पढ़ेंगे, वो तो जब ऑफर होगा उस वक्त पढ़ेंगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो करंट सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये डेटा विजुअलाइजेशन की थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इनके पास भी एक स्किल आ जाए और ये भी टीचिंग के अलावा भी किसी और जगह भी ये जा सकें।
2: मिस सबा नईम, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने यूसीपी के माहौल को एज अ होल कैसे पाया?
1: सर, यूसीपी इज़ नाउ लाइक अ सेकेंड होम टू मी, और यहाँ पे एक बहुत ही अपनायत का एहसास होता है, और इट्स और दूसरी बात यह कि इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट जिसमें हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, लाइक अ सेकेंड होम, जैसे मैंने बताया कि 8 साल हो गए हैं। तो
2: दैट्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फीडबैक। नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग होते हैं अपने माहौल से इस तरह मुतमईन और शादा नहीं होते जिस तरह आपने इजहार किया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितना उस्ताद कलबी तौर पे और जहनी तौर पे आसूदा होगा, मुतमईन होगा, उतना ही बेहतर डिलीवर कर सकेगा। तो डॉक्टर सिद्दीकी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, फिर हम आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। वही सवाल मैं बाद में मिस सबा नईम से भी करूँगा। वो सवाल ये है कि आप आने वाले तलबा को जो कि इरादा रखते हैं यूसीपी में आने का, क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: पैगाम तो आजकल स्टूडेंट्स का थोड़ी सी साइकी भी बन गई है, वो समझते हैं कि जी उस एरिया में जाया जाए जहाँ

0: ज़्यादा पैसा हो और शॉर्टकट हो। मैंने FIT में पढ़ाया और वहाँ मैंने ये देखा कि तीसरे चौथे सेमेस्टर से ही वो कोई कॉल सेंटर में जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहा है। तो मैं उनसे ये कहता था कि आपने फिर ये 8 सेमेस्टर की डिग्री क्यों ज्वाइन की, अगर आपने यही शॉर्टकट लेना था तो वैसे ही चले जाते, और इतनी मुश्किल में आप डाल रहे हैं, और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर आप बेशक जॉब करें, और जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो भी देखा था कि जॉब कर रहे हैं। नतीजा ये है कि डिग्री बहुत ज़्यादा मुतासर होती है उससे, और मैथमेटिक्स की तरफ भी रुझान और कम हो जाता है उनका। तो आने वाले बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपने अपने में पोटेंशियल देखें कि आपका पोटेंशियल क्या है। ये ना देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर आपका जहाँ भी आपका पोटेंशियल अच्छा होगा वहीं आप एक्सेल कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं। तो अपने आप को ढूंढें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। ये बहुत कमी है हमारे स्टूडेंट्स में, उन्हें यही नहीं पता कि हमें अल्लाह ने क्या खूबी दी है। सारी खूबियाँ हर इंसान में नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई खूबी हर इंसान में अल्लाह ने ज़रूर दी होती है, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो ही एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप फिर खुश दिली के साथ, और इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, 8 सेमेस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेमेस्टर में सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, और आप गमी खुशी को भी आपको कुर्बान करना पड़ जाता है। तो ये तो इस जज्बे के साथ आए, और हमारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जा के मिलता रहता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। हम पूरी कोशिश करें स्टूडेंट्स को कि अगर वो अब आ ही गए हैं, डिसीजन कर ही लिया है, तो अब इसको निभाएं। कायदे ने भी ये कहा था कि या तो जब डिसीजन कर लें तो फिर उस पर कायम हो जाएं,
1: चट्टान की तरह कायम डट जाएं। मिस सबा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि आइंदा आने वाले सेमेस्टर में आपके डिपार्टमेंट में क्या ऐसे प्लान्स हैं जो कि ना सिर्फ फैकल्टी को उनके जो है नशोनुमा को बढ़ाएं, बल्कि जो मुस्तकबिल में जहां आपके बच्चों ने जाना है, एम्प्लॉयज के साथ, इंडस्ट्री के साथ कैसे आप डव टेल करेंगे, कौन से सेमिनार्स हैं, कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं, कौन से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो आपके पास है? ये सवाल बाद में मैं शायद से देखिए साहब से भी करूँगा। मिस सबा नईम
2: जी सर, हमारे यहाँ पे UCB का एक ये एनवायरनमेंट है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद रहती है। और अगर पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो वी कंडक्ट डिफरेंट वर्कशॉप्स, और इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे पोस्टर कॉम्पिटिशन है। एंड रिसेंटली आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि हमारा हर एनुअली एक साइंस एंड इंजीनियरिंग फेस्टिवल भी होता है, जिसमें हम साइंसेस को प्रमोट करते हैं। एंड बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, तो हम मैथ्स के डिपार्टमेंट मैथ्स की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सो उसमें हम डिफरेंट इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, विच वी इंस्टिल द इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टू द यंग स्टूडेंट्स, कि मैथ्स जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इट्स नोन एज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, और अभी तक उसकी रेलिवेंस ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे वो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स अब IT के आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स वालों की जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि वी हैव बीन वी आर द लाइक बिगेस्ट फैकल्टी अक्रॉस UCP, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी कैटर कर रहे हैं। सो इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हमेशा पूरे साल में कुछ ना कुछ ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। समर्स में हमारी वर्कशॉप टीचिंग की भी होती हैं, एंड देन रिसर्च के हवाले से भी होती हैं। सो यस,
1: शाह सदीकी साहब, मुख्तसरन तकरीबन 1 मिनट आपके पास है, आप बताइए कि आपके पास क्या प्लान्स हैं आइंदा आने वाले सेमेस्टर में इसातिज़ा के लिए और स्टूडेंट्स को मज़ीद एक्सपोज करने के लिए बाहर की दुनिया से।
0: जी, एक तो मैंने पहले ही स्टूडेंट्स के हवाले से बता दिया कि हमारा प्लान है समर में हम डेटा विजुअलाइजेशन ऑफर करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आउटसाइड UCP, मैंने ये आइडिया दिया था प्रोफेसर साहब को, तो वो कह रहे हैं कम अप विद योर फुल प्लान। तो हम ये चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट समझा जाता है, और हमारे एक पुराने डीन थे, वो ये कहते थे कि रिग्रेस मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं, इसको लाइट बनाएं। तो असल में यही हमारी कमी है कि हम इसको सही तरह से बता नहीं पा रहे होते। हम उसको लाइट मोड में अगर बताएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चा। और यहाँ फिर मैथमेटिक्स की जहाँ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बार बार हम कहते हैं जी कंप्यूटर साइंस ने ये तरक्की कर ली। मैं कहता हूँ कि उसके पीछे सारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पुश करता है टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी पुश करती है मैथमेटिक्स को। आज मैंने जो जबरा सीखा हुआ है, तो आई कैन डेवलप न्यू मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन जो जबरा, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी जो मैं एक छोटी सी मिसाल के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, वो ये है, जब सिटी स्कैन आप सुनते हैं, ये बहुत पहले 89 में ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियन को दिया गया था कि अगर किसी पेशेंट के में कोई ट्यूमर है, हमने उसका वॉल्यूम निकालना है, हमारे पास सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शंस पे डेटा पता है, तो वो मैथमेटिक्स तो डेवलप कर लिया गया, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई और उसको दिखाया नहीं जा सका था। तो वही सीटी स्कैन आज वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में और जाहिर है कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, तो इसकी जो स्टार्ट था, उसका जो वॉल्यूम निकालने का तरीका था, उसका पेपर आज भी डंडी यूनिवर्सिटी का मौजूद है, वो मैथमेटिशियन थे। थैंक यू वेरी मच
1: डॉक्टर सिद्दीकी साहब। एक मेरा ज़ाती सवाल तफन्नुन तबा के लिए, वो ये है कि फिज़िक्स वाले न्यूटन को अपना कहते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी न्यूटन को अपना कहते हैं, आप आज इस कजिए का फैसला कर दीजिए कि बीइंग अ फिजिसिस्ट मैं न्यूटन को अपना कहूँ या मैथमेटिशियन बीइंग अ मैथमेटिशियन आप न्यूटन को अपने डोमेन में कंसिडर करते हैं।
0: ये मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक ही बाप की औलाद हैं और वो बाप है साइंस।
2: आप भी एक्चुअली हमारे हैं।
0: तो ये चूंकि एरिया इतना बड़ा हो गया, आपको आपको बहुत सारे मैथमेटिशियन फिलोसोफर मिलेंगे।
1: बिल्कुल ठीक,
0: वो फिलोसोफर थे और वो मैथमेटिशियन भी थे।
1: ऐसे, ऐसे, ऐसे,
0: तो ये एक ही है, हम सब एक ही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
1: ऐसे जी, ऐसे सारी ये एक दूसरे की सपोर्टिव साइंसेज हैं, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। सो सामी, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, यकीन आपको पसंद आएगा, हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले हफ्ते इसी वक्त इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान
0: जिंदाबाद।

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस,

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो मिनोरिटी में लोग मौजूद होते हैं, जो कि लीडिंग पर्सनालिटीज़ होते हैं, और वहाँ ही हमारे पास मेजॉरिटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके अंडर या बींग अ टीम काम कर रहे होते हैं। तो दोनों में कौन सा बुनियादी तौर पर बेसिक डिफरेंस है कि कुछ लोग लीडर्स बन जाते हैं, कुछ टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो हमारे पास जो थर्ड स्किल है आज डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। देखें, बींग अ लीडर आपने लीड करना है, आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है। यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर टीम। आपने अपना मैसेज, अपना मकसद, अपना विजन अपनी टीम तक पहुंचाना है। तो बुनियादी तौर पे ये बेहद ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, आपके पास ऐसी स्किल्स हों कि जब आप बात करें आपकी बात इम्पार्ट हो, आपकी ऑडियंस में आपकी बात इम्पार्ट हो, आपके जो तबके फिक्र के लोग हैं आपकी बात इम्पार्ट हो, आपकी टीम में जब आप एक अच्छी गुफ्तगू करना जानेंगे या आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं तो आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं। तो अच्छी टीम को चलाने के लिए एक अच्छे लीडर के पास हमेशा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अगर हम अपनी फोर्थ एबिलिटी के बारे में बात करें कि फोर्थ ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो एक लीडर को बनाती है और एक लीडर के पास ये एबिलिटी होनी बेहद ज़रूरी है, दैट इज़ द डिसेसिवनेस। आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टाइम में एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अगर मैं अगेन उसी एग्जांपल पे आऊं कि जब हम क्लास में बींग अ तालिबे इल्म हम मौजूद होते हैं, बींग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ओपन एंडेड रोड्स हैं कि अगर हम जाना चाहते हैं सोसाइटीज़ की तरफ, हम मीडिया क्लब, डिफरेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुबह आते हैं, क्लास लेते हैं, घर चले जाते हैं और सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, उनकी रूटीन ऑफ लाइफ ये होती है। लेकिन वहाँ ही हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं, टीम्स में काम करते हैं, करते करते करते सब कोर, देन कोर, और देन आपको वो प्रेसिडेंशियल बॉडी में नज़र आते हैं। वाई, मतलब वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी है कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया था अपने इनिशियल सेमेस्टर्स में कि वो लीड करना चाहते हैं। सो बींग अ लीडर, आपके पास अच्छा डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी चांस आता है ज़िंदगी में, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, आप अपना फ़ैसला खुद कर सकें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। विजन सिर्फ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उस विजन पे जब आपको फ़ैसला लेना पड़ता है वही एक सबसे आप कह लें अमेजिंग मोड होता है आपकी ज़िंदगी का, जब आप डिसाइड करते हो। बुनियादी तौर पे अगर नाइन्थ क्लास में ही आप देख लें तो आपके पास एक टाइम आता है कि आपको डिसाइड करना होता है आपको कंप्यूटर चूज़ करनी है या बायो चूज़ करनी है। सो अगर आप में डिसेसिवनेस है, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो वहाँ से ही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं कि आपका विजन क्या है। आगे अगर आप कंप्यूटर रख लेते हैं तो उसका आगे स्कोप क्या होगा, क्यों आप कंप्यूटर रखने जा रहे हैं। सो ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते रहते हैं जहां आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। सो ये डिसेसिवनेस की क्वालिटी बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी को गुजारने के लिए। इसी के साथ साथ एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि हम छोड़ जाते हैं लीडर बनने के इस सफ़र में, दैट इज़ द अडेप्टबिलिटी। आपके अंदर अडेप्टबिलिटी होनी चाहिए कि आपने अपनी टीम को कैसे साथ लेके चलना है। आप एक गरूरी अंदाज में या गरूर में आप बींग अ लीडर ही आप चलते जा रहे हैं और अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अडेप्टबिलिटी की पावर आपके पास नहीं है, आप अच्छे लीडर नहीं हैं। लीडर हमेशा दिलों पर राज करता है। लीडर इज़ नॉट लाइक दैट कि जो खड़ा होकर डिबेट करे, कम्युनिकेट करे, अपना विजन डिस्क्राइब करे और चला जाए, दैट इज़ नॉट द लीडर। लीडर वो होता है कि आप खामोश बैठे हों और लोग आपको वोट डाल रहे हों, आप चुप करके खड़े हों तो लोग कह रहे हों कि जब ये इंसान बोलेगा तो जो जैसे ये कहेगा हम वैसे करेंगे, लीडर इज़ दैट। लीडर खामोश भी बैठा हो तो वो लीडर होता है। इसी के साथ मुझे एक छोटा सा एक वाक्या याद आता है, ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। Once I was sitting in my competitive exam with the name of ISSB in Kohat Army Center, और मुझे मालूम पड़ता है कि वहाँ हमारे पास एक मेजर साहब थे, उन्होंने एक मिलिट्री प्लान डिस्कस किया। उन्होंने कहा यहाँ पे आग लगी हुई है, मतलब एक 3D डिज़ाइन उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और आपको यहाँ से गुजर के पार जाना है। सो उससे पहले मैं सिर्फ अपने 12 लोगों की टीम से सिर्फ ये कम्युनिकेट कर रहा था कि यार देखो कुछ भी नहीं होता, यहाँ हम सब सिलेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब उनको इम्पावर करने की कोशिश कर रहा था। सो वो इम्पावर करना कुछ ऐसा असर किया कि मैं अपने उस टेस्ट में बिल्कुल खामोश बैठा था, मेरी खामोशी थी और अचानक वो जो मेजर साहब थे वो पूछते हैं कि बताइए कि आप सब में से अगर आपको कोई एक लीडर चूज़ करना पड़े तो आप किसको करोगे। तो यकीन माने 12 लोगों में से 9 से 10 वोट मेरे लिए खड़े हुए, हाथ खड़ा हुआ कि या हम इसको वोट करना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं ये हमें लीड करे। सो मैंने जब जज किया अपनी पर्सनालिटी को कि एक दिन पहले से मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, मैं तो किसी से खास गुफ्तगू भी नहीं की, तो कैसे मुझे इन्होंने लीडर बना दिया। सो मालूम ये पड़ता है कि हमेशा लीडर एम्पावर करता है, उसके अंदर अडेप्टबिलिटी क्वालिटी होती है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, अपनी टीम के साथ बैठता है, अपने ग्रुप के साथ बैठता है, उनसे डिस्कस करता है, उनके आइडियाज़ लेता है, अपने आइडियाज़ देता है। सो अडेप्टबिलिटी नहायत ज़रूरी है। इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपको लीड करने के लिए, और बींग अ लीडर आपके पास कॉन्फिडेंस पावर होना कितना ज़रूरी है। सो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नई सोच, नई
1: सोच, एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
3: In sadaye Lahore ast, in sadaye UCP ast. Lotfan goosh bedahid FM 92.6 jahane UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, पहाड़ के सीने में सुराख हो नहीं सकता। दरिया की मोजों को अगर रोक ले कोई, दरिया का रुख मोड़ दे तो क्या हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अली हसन आप खिदमत में हाजिर हूँ और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज नहायत अहम मौजू के साथ आप तमाम सामीन की खिदमत में हाजिर हूँ। मौजू ये है कि हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के लोग मौजूद होते हैं। एक वो होते हैं जो मिनोरिटी में होकर लोगों को लीड कर रहे होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं लेकिन वो बीइंग अ टीम उन मिनोरिटी लोगों के नीचे काम कर रहे होते हैं। तो दोनों अशखास में क्या खसूसी फ़र्क है, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो दोनों अशखास में फ़र्क पैदा करती हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, लीड कर जाते हैं, और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो क्या फ़र्क है, आज उस फ़र्क को जानेंगे, आज उस फ़र्क पे बात करेंगे, आज उन क्वालिटीज़ पे बात करेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उन मिनोरिटीज़ को लीडर बना देती हैं और उन मेजॉरिटी को वो पीछे रख देती हैं। तो हर इंसान के ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके आते हैं जहां वो उन चीज़ों पे अगर अच्छा इनिशिएटिव ले तो वो आगे निकल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बुनियादी तौर पर हम 9th क्लास से एक बच्चे की तरबियत को देखें या उसकी एबिलिटीज़ को देखें तो वहाँ ही वो कुछ बच्चे होंगे जो क्लास में तो नलायक मालूम पड़ रहे होंगे लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड में वही अंडर 19 में हमें नज़र आ रहे होते हैं। वहाँ ही कुछ ऐसे बच्चे मालूम पड़ेंगे जो 9th क्लास के बोर्ड में टॉप कर जाएंगे लेकिन वहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हमें मालूम पड़ेंगे जो ना के क्रिकेट में अच्छे चल रहे हैं, ना के पढ़ाई में अच्छे चल रहे हैं, और मिनॉरिटीज़ में चल रहे हैं और बिल्कुल दरमियान में वो चल रहे हैं। तो ऐसे लोग बड़े होकर जब हम मालूम पड़ता है तो वो किसी टीम वर्क में पड़े होते हैं या किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे अपने बच्चों में ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ डालनी चाहिए या बुनियादी तौर पे हमें खुद बजाते खुद अपने किरदार के लिए कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ को चूज़ करना चाहिए जो कल को आने वाले वक्त में हमें लीडिंग पर्सनैलिटी बना दे, हमें बींग अ लीडर इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस कर दे। सो इसके अंदर सबसे पहली जो एक एबिलिटी है जो आप कह सकते हैं नहायत अहम एबिलिटी है वो है विजन। हमेशा लीडर के पास विजन होता है, लीडर बगैर विजन के होता ही नहीं है। उसके पास एक ख्वाब होता है जिस ख्वाब की ताबीर की स्ट्रगल में वो लगा होता है, जिस ख्वाब के लिए वो मेहनत कर रहा होता है, जिस ख्वाब के लिए जब वो सुबह उठता है तो वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है, रात को सोने तक वो उस ख्वाब के लिए ही काम कर रहा होता है। तो बगैर ख्वाब के हमें मालूम पड़ा कि कोई लीडर नहीं होता। तो बुनियादी तौर पे जब आप ग्रो अप होते हैं लाइफ में, आप अपनी टीन एज में आते हैं, आप उस एज सेक्टर में होते हैं जहां आप 12 साल से लेके 16-17 साल की उम्र के दरमियान में होते हैं, तो वहां ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया फ़ानी पे भेजा है। उस शख्स को जब वो इस दुनिया पे आता है तो अल्लाह ने उसको एक वक्त मुकर्रर उसके लिए किया है जिसमें उसके दिल में वो ख्याल डालते हैं कि तुम शायद इस काम के लिए बने हो। अब इट्स अप टू द मैन कि वो उस ख्याल को कैसे पिक करता है, उस ख्याल पे कैसे इनिशिएटिव लेता है। एक ये बहुत अहम क्वालिटी है विजन के बाद, अगर हम देखें इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव इज़ ऑल अबाउट दैट कि आपके क्लास ग्रुप में आप खड़े हैं, अचानक बुनियादी तौर पे आप 5वीं 6वीं जमात के एक तालिब इल्म में आपके क्लास में प्रिंसिपल आते हैं, आके कहते हैं कि बच्चों एक तकरीरी मुकाबला है, ठीक है, उसमें मुझे आप में से किसी एक बच्चे को भेजना है, तो आप में से कोई विलिंग है जाने के लिए। अब वो 5वीं या 6वीं जमात का जो बच्चा होगा या वो पूरी क्लास होगी, उनमें से पहले किसी ने अभी तक तकरीर नहीं की, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है कि उनमें से कोई एक बच्चा खड़ा होगा और हाथ खड़ा करके कहेगा कि प्रिंसिपल को सर मैं ये कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक इनिशिएटिव, दिस इज़ कॉल्ड द इनिशिएटिव ऑफ द लाइफ। वो इंसान लीडरशिप क्वालिटीज वहां से ही लर्न करना स्टार्ट कर जाता है। बाकी क्लास उस पे इस चीज का एतबार करना शुरू कर देती है कि अगर इसको कुछ नहीं भी आता तो ये अपनी क्वालिटीज, अपनी अबिलिटीज पे इतना बिलीव करता है कि ये आगे जाएगा, इसको अपनी जात पे इतना यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, और ये बिलीव बेहद ज़रूरी है। तो जब जिंदगी में हम इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम ये चीज सोच लेते हैं कि हमने ये करना है, तो आप अपने जो तबका फिक्र है या अपनी सोच का जो आपका तबका बना हुआ है या अपने आसपास के जो आपके मौजूदा लोग हैं उनमें से आप लीडर उभरते हैं, मालूम पड़ता है कि ये इंसान लीडर है जब वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है। तो बेसिक एबिलिटी जो आपको चाहिए बींग अ लीडर, वो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे पास तकरीबन 15 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटा करके कि कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम लीडर बन सकते हैं। तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो मिनोरिटी में लोग मौजूद होते हैं, जो कि लीडिंग पर्सनैलिटीज़ होते हैं, और वहाँ ही हमारे पास मेजोरिटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके अंडर या बींग अ टीम काम कर रहे होते हैं, तो दोनों में कौन सा बुनियादी तौर पर बेसिक डिफरेंस है कि कुछ लोग लीडर्स बन जाते हैं, कुछ टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास जो थर्ड स्किल है आज डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। देखें, बींग अ लीडर आपने लीड करना है, आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर टीम। आपने अपना मैसेज, अपना मकसद, अपना विजन अपनी टीम तक पहुंचाना है। तो बुनियादी तौर पे ये बेहद ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, आपके पास ऐसी स्किल्स हों कि जब आप बात करें आपकी बात इम्पार्ट हो, आपकी ऑडियंस में आपकी बात इम्पार्ट हो, आपके जो तबके फिक्र के लोग हैं आपकी बात इम्पार्ट हो, आपकी टीम में जब आप एक अच्छी गुफ्तगू करना जानेंगे या आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं तो आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं। तो अच्छी टीम को चलाने के लिए एक अच्छे लीडर के पास हमेशा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अगर हम अपनी फोर्थ एबिलिटी के बारे में बात करें कि फोर्थ ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो एक लीडर को बनाती है, और एक लीडर के पास ये एबिलिटी होनी बेहद ज़रूरी है, दैट इज़ द डिसेसिवनेस। आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टाइम में एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अगर मैं अगेन उसी एग्जांपल पे आऊं कि जब हम क्लास में बींग अ तालिब इल्म हम मौजूद होते हैं, बींग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ओपन एंडेड रोड्स हैं कि अगर हम जाना चाहते हैं सोसाइटीज़ की तरफ, हम मीडिया क्लब, डिफरेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुबह आते हैं, क्लास लेते हैं, घर चले जाते हैं और सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, उनकी रूटीन ऑफ लाइफ ये होती है। लेकिन वहाँ ही हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं, टीम्स में काम करते हैं, करते करते करते सब कोर, देन कोर, और देन आपको वो प्रेसिडेंशियल बॉडी में नज़र आते हैं। वाई, मतलब वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी है कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया था अपने इनिशियल सेमेस्टर्स में कि वो लीड करना चाहते हैं। सो बींग अ लीडर, आपके पास अच्छा डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी चांस आता है ज़िंदगी में, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, आप अपना फ़ैसला खुद कर सकें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। विजन सिर्फ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उस विजन पे जब आपको फ़ैसला लेना पड़ता है वही एक सबसे आप कह लें अमेजिंग मोड होता है आपकी ज़िंदगी का, जब आप डिसाइड करते हो। बुनियादी तौर पे अगर नाइन्थ क्लास में ही आप देख लें तो आपके पास एक टाइम आता है कि आपको डिसाइड करना होता है आपको कंप्यूटर चूज़ करनी है या बायो चूज़ करनी है। सो अगर आप में डिसेसिवनेस है, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो वहाँ से ही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं कि आपका विजन क्या है। आगे अगर आप कंप्यूटर रख लेते हैं तो उसका आगे स्कोप क्या होगा, क्यों आप कंप्यूटर रखने जा रहे हैं। सो ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते रहते हैं जहां आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। सो ये डिसाइसिवनेस की क्वालिटी बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी को गुजारने के लिए। इसी के साथ साथ एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि हम छोड़ जाते हैं लीडर बनने के इस सफ़र में, दैट इज़ द अडेप्टबिलिटी। आपके अंदर अडेप्टबिलिटी होनी चाहिए कि आपने अपनी टीम को कैसे साथ लेके चलना है। आप एक गरूरी अंदाज में या गरूर में आप बींग अ लीडर ही आप चलते जा रहे हैं और अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अडेप्टबिलिटी की पावर आपके पास नहीं है, आप अच्छे लीडर नहीं हैं। लीडर हमेशा दिलों पर राज करता है। लीडर इज़ नॉट लाइक दैट कि जो खड़ा होकर डिबेट करे, कम्युनिकेट करे, अपना विजन डिस्क्राइब करे और चला जाए, दैट इज़ नॉट द लीडर। लीडर वो होता है कि आप खामोश बैठे हों और लोग आपको वोट डाल रहे हों, आप चुप करके खड़े हों तो लोग कह रहे हों कि जब ये इंसान बोलेगा तो जो जैसे ये कहेगा हम वैसे करेंगे, लीडर इज़ दैट। लीडर खामोश भी बैठा हो तो वो लीडर होता है। इसी के साथ मुझे एक छोटा सा एक वाक्या याद आता है, ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वंस आई वॉज सिटिंग इन माई कॉम्पिटेटिव एग्जाम विद द नेम ऑफ ISSB इन कोहाट आर्मी सेंटर, और मुझे मालूम पड़ता है कि वहाँ हमारे पास एक मेजर साहब थे, उन्होंने एक मिलिट्री प्लान डिस्कस किया। उन्होंने कहा यहाँ पे आग लगी हुई है, मतलब एक 3D डिज़ाइन उन्होंने सामने रखा, उन्होंने कहा यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और आपको यहाँ से गुजर के पार जाना है। सो उससे पहले मैं सिर्फ अपने 12 लोगों की टीम से सिर्फ ये कम्युनिकेट कर रहा था कि यार देखो कुछ भी नहीं होता, यहाँ हम सब सिलेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहा था। سو وہ امپاور کرنا کچھ ایسا اثر کیا کہ میں اپنے اس ٹیسٹ میں بالکل خاموش بیٹھا تھا، میری خاموشی تھی، اور اچانک وہ جو میجر صاحب تھے وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ سب میں سے اگر آپ کو کوئی ایک لیڈر چوز کرنا پڑے تو آپ کس کو کرو گے؟ تو یقین مانے 12 لوگوں میں سے 9 سے 10 ووٹ میرے لیے کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑا ہوا کہ یا ہم اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں یہ ہمیں لیڈ کرے۔ سو میں نے جب جج کیا اپنی پرسنالٹی کو کہ ایک دن پہلے سے میں ان سے انٹریکٹ کر رہا تھا، میں تو کسی سے خاص گفتگو بھی نہیں کی، تو کیسے مجھے انہوں نے لیڈر بنا دیا؟ سو معلوم یہ پڑتا ہے کہ ہمیشہ لیڈر امپاور کرتا ہے، اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی کوالٹی ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے ڈسکس کرتا ہے، ان کے آئیڈیاز لیتا ہے، اپنے آئیڈیاز دیتا ہے۔ سو اڈیپٹیبلٹی نہایت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ کانفیڈینس کتنا ضروری ہے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو لیڈ کرنے کے لیے، اور بینگ اے لیڈر آپ کے پاس کانفیڈینس پاور ہونا کتنا ضروری ہے۔ سو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सकते।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. हम बात कर रहे हैं मिस नीलम गुल से, जो कि अखोत क्लॉथ बैंक और अखोत फूड बैंक के हेड हैं, और आज रिप्रेजेंट कर रही हैं अखोत नाम के अदारे को, जिसका एक अच्छा खासा नाम पाकिस्तान में और अब्रॉड भी मौजूद है. उनके हेड डॉक्टर अमजद साकिब दो मरतबा नॉमिनेट भी हो चुके हैं नोबेल इनाम के लिए. तो हम बात कर रहे थे मिस नीलम फ्लड के हवाले से यूसीबी की, तो हमने बता दी कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, और यूसीबी में सब लोग जानते भी हैं उस बारे में. हमें अखोत के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए कि अखोत ने इदारे के तौर पर क्या कंट्रीब्यूट किया और कहां तक आपकी आउटरीच रही, क्योंकि आपकी आउटरीच तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर गांव तक है इवन.
2: बिल्कुल ऐसी पूरे पाकिस्तान में जैसे फ्लड आया और डॉक्टर अमजद साकिब को भी पता चला और हमारी पूरी टीम को जब अंदाजा हुआ कि कितनी ज्यादा मैस डिस्ट्रक्शन हुई है, तो पूरी टीम कलेक्टिवली हमने पूरे पाकिस्तान में मैसिवली काम किए. इनिशियली टॉकिंग अबाउट, एक तो हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है घर बनाने का, जो कि अभी भी हम कर रहे हैं. डॉक्टर अमजद साकिब ने टारगेट है कि 10,000 घराने हमने फुली उनको बना के देने, जिनके घर गिर गए, कोई कमरा गिर गया, जो भी प्रॉब्लम्स आई. अब तक हमने 2,000 से ज़्यादा जो घराने हैं वो हमने कंस्ट्रक्ट करके उनको हैंड ओवर कर दिए हैं, बाकी इन प्रोसेस हैं. उनका इस तरह से किया, हमने उनको लोन दिया. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन लोगों से जब हम जाके बात की हमारी टीम्स ने और डॉक्टर अमजद साकिब ने, तो उन्होंने कहा कि हमें लोन चाहिए, हमें आपका भीख नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए कि आप हमें दे दो और हमसे वापस ना लें, क्योंकि वो काफ़ी खुददार लोग हैं. तो वो उन्होंने कहा कि आप हमें लोन दें और जैसे जैसे हम स्टेबल हो जाएंगे, बेहतर होंगे, तो हम आपको लोन वापस कर देंगे. तो 2000 से ज़ायद हमने घरानों पे काम कर लिए, बाकी इन प्रोसेस है. इसके अलावा राशन हमने दिया, 10,000 फैमिलीज़ को राशन दिया हमने. कैश डिस्ट्रीब्यूशंस भी की कोई 40,000 फैमिलीज़ में. फिर हमने कैश डिस्ट्रीब्यूशंस हमने इस तरह से की कि कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि फुलफ़िल नहीं कर पा रहे और हम उनको डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमने मिनिमल कैश उनको दिया. इसके अलावा हमने 10,000 टेंट्स दिए, 50,000 लोगों में हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशंस की, और मेडिकल कैंप्स 10,000 लोगों को हमने वहाँ पे सपोर्ट किया. देन कमिंग टुवर्ड्स क्लोथ्स बैंक, क्लोथ्स बैंक ने स्पेसिफिकली जो फ्लड्स में कोई 1 मिलियन क्लोथ्स हमने पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट किए. स्पेशली अखोत की 100 ऐसी डायरेक्ट ब्रांचेस थी जो डायरेक्टली हिट हुई थ्रू फ्लड, उनको हमने बहुत एक्सेसिवली सपोर्ट किया, ठीक है. फिर इसके अलावा उनको हमने टेंट्स दिए, राशन दिया, इवन बहुत सी हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन से कॉर्पोरेट किया, तो उनको हमने जूते नए दिए, कपड़े नए दिए. एक हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी आई, उसको हमने 2 सूट दिए, तो उसने कहा कि मुझे 2 सूटों की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ही सूट की ज़रूरत है, बस 2 हफ्ते से मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, क्योंकि मैं फ्लड में ही मतलब मैं सारा कुछ बह गया और मेरे पास इतने भी कपड़े नहीं है कि मैं इनको चेंज कर पाऊँ, तो मुझे एक ही सूट चाहिए, मैं ये सूट पहन लूँगी और दूसरा सूट धो लूँगी. फिर एक और आई केस स्टडी के 2 माँ बेटियाँ थीं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ 2 सूट दें, क्योंकि हमने कपड़े चेंज नहीं किए, फ्लड्स में रह रहे के सारे जिस्म पे कीड़े पड़ने लग गए थे. तो इस तरह की केस स्टडीज़ को हमने बहुत फार फ्लंग एरियाज में, इवन बहुत सी जगहों पे फ्लड खड़ा भी हुआ था, कश्तियों के थ्रू जाके, वॉलंटियर्स के थ्रू जाके जो बहुत एनर्जेटिक थे, उनको घर तक हमने उनके लिए राशन पहुँचाया, टेंट्स पहुँचाए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स पहुँचाए, कपड़े पहुँचाए, बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या, बलूचिस्तान तक भी हम लगे. इवन बहुत से ऐसे हमारे साथ डोनर्स और जो लोग थे अटैच हुए जहाँ पे अखोत की प्रेजेंस नहीं थी, जैसे बहुत से ऐसे आप ये कहें डेरा इस्माइल खान हो गया, कोट सुलेमान हो गया, वहाँ पे अखोत की प्रेजेंस नहीं, वहाँ तक भी हमने पहुँचाए. वहाँ पे इतना हिली एरिया है कि वहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी भी नहीं जा सकती. इसके अलावा जो है हमने अखोत ने राशन दिए, ये तो मैंने बता दिया पहले, उसके टेंट्स दिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, और बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया.
1: ज़बरदस्त जी. उस सूरत हाल में तो जो छोटे शीरखोर बच्चे हैं उनके लिए दूध की ज़रूरत भी बड़ी पड़ी होगी.
2: बिल्कुल, तो हमें काफ़ी डोनर्स ने हमें दिए थे दूध दिया. इसके अलावा फीडर, वाटर बॉटल्स, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, बच्चों के लिए टॉयज़, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी हमने काफ़ी दिया उनको.
1: ब्लैंकेट्स
2: एग्जैक्टली थैंक यू वेरी मच टू यूसीपी
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल मैं अब थैंक यू वेरी मच टू यूसीपी क्योंकि यूसीपी ने हमें इतना ज्यादा सपोर्ट किया माशाल्लाह आपकी तरफ हमें 10 मस्जिद आए और वो हमने जो आपके मस्जिद ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स के वो तो हमने डायरेक्ट ही इन द ब्रांच भिजवाए एंड दैट वॉज रियली अमेजिंग लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था और क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ तब आ रही थी और सर्दियाँ मतलब बहुत मुश्किल थी तो पीपल आर वेरी हैप्पी
1: That's great, जी इसमें स्पेसिफिकली बताता चलूँ कि हमारी एक फैकल्टी फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने अकेले उन्होंने कुछ 3 million की मेडिसिन माशाल्लाह कलेक्ट की और वो भी आपके थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है यू नो बेटर और ब्लैंकेट्स क्विल्ट्स और जूते और हर चीज़ हम जो हमें चीज़ें कलेक्ट होती नहीं हम आपको हैंड ओवर करते रहे माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी किया चीज़ें जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती थी आपने पहुँचाई माशाल्लाह बड़ी खिदमत रही आप लोगों की मिस इसके अलावा जो अखवत फूड बैंक है उस पर ज़रा रोशन कि वो क्या करता है खुद फूड बैंक किस तरह से लोगों को सपोर्ट करता है
2: सर खुद फूड बैंक हमने 2015 में स्टार्ट किया था और उसमें ये इनिशियली हमने किया कि बहुत से ऐसे मजदूर आपको पता है सुबह के टाइम दिहाड़ी लगती है 8 o'clock या 9 o'clock मैक्सिमम जो होता है वो अपनी दिहाड़ी पे चले जाते हैं वरना वो दिहाड़ी पे नहीं जाते तो इनिशियली टाउनशिप के डिफरेंट एरियाज में हम लोगों की वैन जाती थी कुक उनको नाश्ता देती थी स्पेशली मजदूरों को फिर सर इसको थोड़ा और हमने एक्सपैंड किया तो अब हमने उनको जो है इस तरह से करना शुरू किया है कि हमारे पास कुक्ड मील आता है सर हमने ऐसी 250 फैमिलीज एलोकेट की हुई है जो कि अपने एक दिन का भी खाना लाहौर की विसिनिटी में पूरा नहीं कर पाती सर उनको हम लोग उनके डोर स्टेप पे खाना पहुंचाते हैं और इसकी फिलॉसफी ये है कि सर वो इतनी खुददार फैमिलीज हैं कि वो बाहर मांगती भी नहीं उनके बच्चे भी बाहर नहीं निकलते वो भूखे सोना पसंद मतलब रहना पसंद करते हैं मगर मांगना पसंद नहीं करते उनको सर हमने ढूंढा थ्रू आर ब्रांचेस थ्रू आर पीपल और उनको जाके हम डेली कुक मील उनके डोर स्टेप पे देते हैं इसके अलावा हमारे पास एक डोनर है वो हमें 250 राशन देते हैं ऑन मंथली बेसिस सर वो हमारी डिफरेंट फैमिलीज हैं फिर हमारा पाकिस्तान फूड अथॉरिटी के साथ भी सर MOU सर उसमें ये होता है कि उनके जो सैम्पल्स होते हैं दैट आर गुड टू ईट उनको हमारी एक डिफरेंट फैमिलीज हैं उनको भी हम केटर करते हैं जैसे जैसे हमारे पास सैंपल्स आते हैं वो हम देते हैं उन सैंपल इंक्लूड करते हैं सर आपका मीट आपके टॉफीज आपका चिकन आपका मिल्क आपका ऑयल हर चीज़ उसमें इंक्लूड होती है सर तो ये सर हमारा फूड बैंक है और इसके अलावा सर उसको कोशिश करें कि थोड़ा और एक्सपैंड करें और सर कुछ डोनर्स को और इंक्लूड करें क्योंकि सर पाकिस्तान में आपको पता है हालात थोड़े से ख़राब हो रहे हैं राशन लोगों का कम्प्लीट नहीं होता और पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे जा रहे हैं बहुत परेशान
1: जी महंगाई के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त उसमें तो बहुत से लोग वाकई जो मिडिल क्लास में थे वो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे जाना शुरू हो गए तो बड़ी खिदमत है जी आप लोगों की माशाल्लाह लेकिन ये फूड अथॉरिटी का आपने जब नाम लिया तो मुझे ख्याल है कि ऐसा तो नहीं कि जो वो जब्त करते हो खाना वाना कहीं से वो आपको डोनेट कर देते हो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस पर फर्दर रोशनी डालेंगे जी आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक टाइम हो चुका है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया

0: एक एप्पल बना के ना दिया कि इसको कलर करो और फिर हम उसके बाद मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे. सर उसने उस एप्पल के अंदर येलो कलर कर दिया. तो हमने उससे पूछा कि आपको नहीं पता कि इसका कलर तो रेड होता है. तो उसने कहा कि मैंने तो कभी एप्पल ही नहीं खाया. तो सर फिर उसको हमने पहले कलर करवाया, उसको फिर खिलाया, उसको कहा कि ये ऐसे होते. फिर सर अभी रिसेंटली बहुत छोटी विशेज होती हैं, एक बच्चा था सर जनरल हॉस्पिटल में, सर उसकी विश थी कि उसको बाईसाइकिल चाहिए. सर बाईसाइकिल वॉज अ बिट एक्सपेंसिव, बट देन अगेन हमने फंड्स अकोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट किए तो सर कलेक्ट करके हमने बाईसाइकिल जब खरीदी, सर वो बच्चे को डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा था. एंड जो नर्सेस थी वो कहती थी कि इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है. सर जब हमने बाईसाइकिल जाके दी उसको, तो पूरी जो लॉबी है वहाँ पे वो बाईसाइकिल चला रहा है और नर्सें इतनी खुश हो रही थी कि हमारी भी मतलब बहुत हम खुश हुए सर. आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द मोमेंट. और फिर थोड़े अरसे बाद हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई. फिर एक और छोटा सा बच्चा था सर, उसको मतलब जब व्हेन ही वाज बॉर्न तो ही वाज फाइन, बट 7-8 इयर्स की एज में उसको सर आई कैंसर हो गया. तो सर उसकी वालदा ने उसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो ही सेड कि मुझे बॉल चाहिए. तो सर हमने फिर उसको 2-3 बॉल्स लेके दी, क्योंकि बहुत बहुत मतलब छोटी सी विश थी उसकी और उसके लिए क्या मैटर करता है, मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते. इस तरह सर हम डिफरेंट विशेज पूरी करते हैं. और सर हमने फिर डॉक्टर्स से पूछा और नर्सेज से पूछा कि क्या वाकई इसका इम्पैक्ट आता है, तो देवर ऑफ द व्यू के बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बच्चा जब डिफरेंट प्रॉब्लम्स में होता है, उसको इंजेक्शन लग रहे होते हैं, वो पहले ही चिड़चिड़ा हो रहा होता है, उसको तबीयत खराब और रो रहा होता है, तो जब उसकी विश पूरी होती है तो वो उसकी हीलिंग भी बेहतर होती है, वो खुश फील करता है. फिर सर इस तरह जब मंथली विशेज अगर आ जाती हैं, अगर पुराना ही बच्चा है या मतलब मंथ में अगर वो सर्वाइव कर गए, तो सर वो खुशी से आके अपनी मेडिकेशंस कंप्लीट कर लेता है. तो नो डाउट सर विशेज जब फुलफिल हो रही होती है तो बच्चों को बहुत इम्पैक्ट की रही होती है. तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की फुलफिल करते रहे. अभी रिसेंटली 5 February को कैंसर डे होता है, चिल्ड्रन कैंसर डे, उस पर भी हम लोग गए. छोटी छोटी विशेज थी, बारबी डॉल्स थी, डॉल हाउस था, बुक्स थी, कलर पेंसिल्स थी, तो द चिल्ड्रन आर सो हैप्पी और उसके साथ हम भी बहुत खुश होते हैं. बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता चलता है अगर हम जैसे नॉर्मल भी लोग हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर. जैसे कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, जो कि हमें तब तक एहसास नहीं होता जब तक नहीं होती. तो वहाँ जाके रियलाइज होता है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि हमारे पास सेहत है और हम हर काम खुशी से कर सकें.
1: माशाल्लाह जी, बड़ी सआदत की बात है कि आप लोगों को ये मौका मिलता है कि आप उन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर पाते हैं माशाल्लाह. और डेफिनेटली उनका टाइम तो कम ही होता है, जैसे आपने बताया टर्मिनली एल बच्चे होते हैं तो उनके पास इतनी मोहलत नहीं होती. तो चलें जाते जाते उनकी कुछ ख्वाहिशात पूरी हो जाएँ तो वो खुश जाएंगे बजाय इसके कि वो उदासी के माहौल में ही वो चले जाएँ यहाँ से. इसके अलावा मिस खोद के पास बहुत से लोग वॉलंटियर वर्क करने के लिए आते हैं, UCP से भी, दूसरे इदारों से भी आते होंगे, और इंटर्नशिप्स भी आप लोग ऑफर करते हैं. वो किस तरह से आप बच्चों को इंगेज करते हैं इंटर्नशिप्स में और वॉलंटियर वर्क में?
0: सर एक तो हमारे पास पूरे अराउंड द ईयर वॉलंटियर प्रोग्राम्स होते हैं. सर हम UCP से कनेक्टेड हैं, बाकी डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल से कनेक्टेड होते हैं. ऑल अराउंड द ईयर हमारे पास बच्चे आते हैं सर, डिफरेंट प्रोजेक्ट से कनेक्ट करते हैं. माइक्रो फाइनेंस में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, फूड बैंक में, क्लोथ्स बैंक में, अखोर ड्रीम्स में आके कनेक्ट करते हैं सर. फिर कुछ लाइक क्लोथ्स कलेक्शन ड्राइव्स रन होती हैं सर, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आके बच्चों की विशेस फुलफिल करते हैं. एक तो सर ये तो वॉलंटियर प्रोग्राम हो गया, देन वी हैव समर प्रोग्राम्स एज वेल, जिसमें सर हमारा फेलोशिप प्रोग्राम आ जाता है, ना खुद इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है. सर उसमें हम कोरली फोकस करते हैं ऑन द स्किल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ डेवलप बिल्डिंग और सर वैल्यूज़ पे, क्योंकि अखुत की फिलॉसफी जो है वो वैल्यूज़ पे बेस्ड करती है. तो सर हम वो कोशिश करते हैं कि बच्चों में इनकलकेट करें. देन वी गिव देम अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2030 सर. उसमें ये होता है कि उनको प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं और स्ट्रेंथ बिल्डिंग, स्किल्स बिल्डिंग हो रही होती है. तो ये हमारा पूरा होता है, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 80 क्रेडिट आवर्स जो कि डिफरेंट स्कूल्स की और HSC की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फुलफिल होती है.
1: राइट, सोशल मीडिया प्रेजेंस का क्या सिचुएशन है? इज खुवत एक्टिव ऑन सोशल मीडिया?
0: जी बिल्कुल, खुवत इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. हमारे खुवत क्लोथ्स बैंक एंड डॉक्टर अमित साकिब साहब के पेज है ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. सो यू कैन गो एंड यू कैन फॉलो दोज पेजेस. अपडेट्स सब हर प्रोजेक्ट्स की वहाँ पे आ रही होती है.
1: رائٹ، دیٹس گریٹ جی. اور اس کے ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے جو یو سی پی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر والنٹیئر کرنا چاہیں اخوت کے ساتھ تو وہ وی آئی ایس ڈپارٹمنٹ کو رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ول بی گلیڈ ٹو ہیلپ یو ان پلیسمنٹ ایٹ اخوت. اور اخوت کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بڑے اچھے سے کیٹر کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ والنٹیئرنگ کی ضرورت پاکستان میں کیوں ہے. یہی ہمارا بیسک ایم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوشلی رسپانسبل سٹیزنس بنا سکیں، اور اس کے لیے ان کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح کے مسائل ہیں، لوگ کس طرح کی ڈپریویشن فیس کرتے ہیں، کس طرح کی غربت ہے، کس طرح کے مسائل ہیں، اور ان کے حل میں والنٹیئرز کا کیا رول ہے. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ مس. آج آپ کے شو میں آنے کا بہت شکریہ. آپ نے بہت سی چیزیں کلیئر کی ہیں خود کے بارے میں اور خود کے پروجیکٹس کے بارے میں. امید ہے کہ لوگوں کو مزید بھی اگر کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو آپ سے رابطہ ضرور کریں گے تھرو یور سوشل میڈیا. سو تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی خواہشات کے دائرے میں مت گھومتے رہیے، دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچیں اور دوسروں کا بھلا کریں دعائیں. اللہ حافظ.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

ہر ابتدا ہے تیرے ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ

0: हाँ साहब, आवाज आंख रो रो के तलब करती है रहमत तेरी,
1: अल्लाह
0: दिल धड़कता है तो आती है यही एक आवाज। आवाज समा फरमाए, क्या आवाज।

0: नहीं क्या जो तुझे समझे, तू लाख बशर अपने को कहे कुछ और गुमाने आलम है।
1: क्यों
0: जलवे तेरे उस वक्त भी थे,
2: उस वक्त भी थे
0: जलवे, जलवे तेरे, जलवे तेरे उस वक्त भी थे, कम भी नहीं थे।

अली खुदा का एक वली है, अली खुदा का एक वो वली है, अजल से जिसकी जया चली है, अली खफी है, अली जली है, अली का नारा कर।